अरे वाह बड़ा कटी होंद प्रतिचार मट देनो मैं सिंधु गान अत्र लसन आई थैंक यू राणाची गुड जॉब